0: चांदनी रातें, चांदनी रातें।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है, जबरदस्त है।

कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM
1: बिंदास
2: awesome.
3: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
4: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है
2: cool song.

गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: यार मुझे 10GB फ्री मिला मेरे हाला रिचार्ज के साथ।
3: क्या, कैसे?
2: बस रिचार्ज करो और तुम्हें फ्री डेटा या मिनट्स मिलते हैं। कल मुझे 50 फ्री मिनट्स मिले।
3: रोज मिलता है क्या?
2: हाँ रोज मिलता है।
3: मैं भी अपना हाला नंबर रिचार्ज कर रहा हूँ।
2: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
4: सलाम प्रणाम नमस्कार वणक्कम, मैं हूँ जैकी श्रॉफ। रेडियो ऑलिव, बोलो बिंदास।

हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: रहा हूँ।
1: भैया छोड़ो ना।
0: क्यों छोड़ू?
1: प्लीज समझो ना।
0: क्या समझूं?
1: वो लोग देख रहे हैं।
0: अरे तो देखने दो, और जलेंगे।
1: अच्छा तो ये बात है, तो मैं और पास आऊँ?
0: आओ ना।

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड दी हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: यार, कार सर्विस के लिए बेस्ट और ट्रस्टेड जगह कौन सी है?
2: सलवा रोड पर वैल्वोलिन AMTC, क्विक सर्विस और नो टेंशन.
1: चीप ऑयल पर भरोसा नहीं होता है भाई.
2: अरे भाई, वहाँ ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स हैं, सिर्फ जेन्युइन वैल्वोलिन ऑयल, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं.
3: विजिट वैल्वोलिन AMTC सलवा रोड या कॉल करें 7765 5954. वैल्वोलिन, ड्रिवन बाई ट्रस्ट, पावर्ड बाई क्वालिटी.

0: खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
3: हेलो नमस्कार, मम्मा मिया, मैं हूँ चंकी पांडे और आप सुन रहे हो मुझे रेडियो ऑल।

गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: अरे, इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है
3: कूल सॉन्ग।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
1: यार, कार सर्विस के लिए बेस्ट और ट्रस्टेड जगह कौन सी है?
2: सलवा रोड पर वेल्वोलिन AMTC, क्विक सर्विस और नो टेंशन।
1: चीप ऑयल पर भरोसा नहीं होता है भाई?
2: अरे भाई, वहाँ ट्रेंड एक्सपर्ट्स हैं, सिर्फ जेन्युइन वेल्वोलिन ऑयल, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं।
3: विजिट वेल्वोलिन AMTC सलवा रोड या कॉल करें 7765 5954। वेल्वोलिन, ड्रिवन बाई ट्रस्ट, पावर्ड बाई क्वालिटी।

आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो पॉलिट, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: यार कार सर्विस के लिए बेस्ट और ट्रस्टेड जगह कौन सी है?
2: सलवा रोड पर वेल्वलिन AMTC. क्विक सर्विस और नो टेंशन.
1: चीप ऑयल पर भरोसा नहीं होता है भाई.
2: अरे भाई वहाँ ट्रेंड एक्सपर्ट्स हैं. सिर्फ जेन्युइन वेल्वलिन ऑयल, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं.
3: विजिट वेल्वलिन AMTC सलवा रोड या कॉल करें 7765954. वेल्वलिन ड्रिवन बाई ट्रस्ट पावर्ड बाई क्वालिटी.

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: Hi everyone, this is Benny Deol here.
2: Benny Deol here.
1: Olive Radio 106.3. Jio Bindas.
3: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.

हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड दी हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: यार, कार सर्विस के लिए बेस्ट और ट्रस्टेड जगह कौन सी है?
2: सलवा रोड पर वैल्वोलिन AMTC, क्विक सर्विस और नो टेंशन.
1: चीप ऑयल पर भरोसा नहीं होता है भाई.
2: अरे भाई, वहाँ ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स हैं, सिर्फ जेन्युइन वैल्वोलिन ऑयल, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं.
3: विजिट वैल्वोलिन AMTC सलवा रोड या कॉल करें 7765 5954. वैल्वोलिन, ड्रिवन बाई ट्रस्ट, पावर्ड बाई क्वालिटी.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: अरे, इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
3: हाय देयर फ्रेंड्स, दिस इज डीजे सुकेतु। डीजे सुकेतु, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम, जियो जियो बिंदास।
4: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर 1 एशियन रेडियो नेटवर्क।

रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।

हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

106.3 FM, Gio Bendaz.

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड दी हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: यार, कार सर्विस के लिए बेस्ट और ट्रस्टेड जगह कौन सी है?
2: सलवा रोड पर वैल्वोलिन AMTC, क्विक सर्विस और नो टेंशन.
1: चीप ऑयल पर भरोसा नहीं होता है भाई.
2: अरे भाई, वहाँ ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स हैं, सिर्फ जेन्युइन वैल्वोलिन ऑयल, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं.
3: विजिट वैल्वोलिन AMTC सलवा रोड या कॉल करें 7765 5954. वैल्वोलिन, ड्रिवन बाई ट्रस्ट, पावर्ड बाई क्वालिटी.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: अरे, इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
3: हाय गाइस, दिस इज अबार्शति खुराना और आप मुझे सुन रहे हो रेडियो ऑलिव।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटीजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम
1: बिंदास
2: ओसम
3: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर
4: क्या बात है सर क्या पर ये बात है
2: ओसम

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: यार कार सर्विस के लिए बेस्ट और ट्रस्टेड जगह कौन सी है?
3: सलवा रोड पर वैल्वोलिन AMTC, क्विक सर्विस और नो टेंशन।
2: चीप ऑयल पर भरोसा नहीं होता है भाई?
3: अरे भाई वहाँ ट्रेंड एक्सपर्ट्स हैं, सिर्फ जेन्युइन वैल्वोलिन ऑयल, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं।
4: विजिट वैल्वोलिन AMTC सलवा रोड या कॉल करें 7765 5954। वैल्वोलिन, ड्रिवन बाई ट्रस्ट, पावर्ड बाई क्वालिटी।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: हाय गाइस, दिस इज जुरीता गांधी।
2: रेडियो ऑलिव, आई एम नंबर वन।
1: यू आर लिसनिंग टू मी ऑन रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास।
3: Olive Sonor Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Alkhor.

रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدنا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: अरे, इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
3: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
2: योर स्पेशल ऑफर?
3: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
2: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
3: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
2: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
1: Fresh fish on the grill, slow-cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Dana Dal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Alkhor.

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: यार कार सर्विस के लिए बेस्ट और ट्रस्टेड जगह कौन सी है?
2: सलवा रोड पर वैल्वोलिन AMTC, क्विक सर्विस और नो टेंशन।
3: चीप ऑयल पर भरोसा नहीं होता है भाई।
2: अरे भाई वहाँ ट्रेंड एक्सपर्ट्स हैं, सिर्फ जेन्युइन वैल्वोलिन ऑयल, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं।
4: विजिट वैल्वोलिन AMTC सलवा रोड या कॉल करें 7765-5954। वैल्वोलिन, ड्रिवन बाई ट्रस्ट, पावर्ड बाई क्वालिटी।
5: Hi, this is Amitabh Bachchan and you're listening to

छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

106.3 रेडियो ऑलिवर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ टेक टॉक। जहाँ पर हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, लेकिन मस्ती के, मजे के, तड़के के साथ। अब देखिए यार, मैं आई हूँ तो बहुत सारी ऐसी अटपटी सी, चटपटी सी चीजें तो आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको वीकेंड की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसा जा रहा है आपका वीकेंड? 3311063 पर मुझे जल्दी से बता दो। एंड जो है अपने स्पीकर का जो वॉल्यूम है, रेडियो का जो वॉल्यूम है, उसको एकदम बढ़ा लो, क्योंकि अमेजिंग वाले गाने तो मैं आपको सुनाने ही वाली हूँ, लेकिन साथ में मतलब टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या हो रहा है वो भी बताने वाली हूं। तो देरी किस बात की है गाइस, एंजॉय करो ये गाने। मैं आती हूं जरा आपके लिए टेक्नोलॉजी के अपडेट्स का पिटारा लेके। स्टे ट्यून्ड और कहते रहो जियो बिंदास।

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: यार, कार सर्विस के लिए बेस्ट और ट्रस्टेड जगह कौन सी है?
2: सलवा रोड पर वैल्वोलिन AMTC, क्विक सर्विस और नो टेंशन।
1: चीप ऑयल पर भरोसा नहीं होता है भाई?
2: अरे भाई, वहाँ ट्रेंड एक्सपर्ट्स हैं, सिर्फ जेन्युइन वैल्वोलिन ऑयल, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं।
3: विजिट वैल्वोलिन AMTC सलवा रोड या कॉल करें 7765-5954। वैल्वोलिन, ड्रिवन बाई ट्रस्ट, पावर्ड बाई क्वालिटी।
4: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन।
5: हाय, दिस इज विपाशा बासु।
6: हाय, आई एम राजकुमार राव।
7: हाय, मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा।
8: हाय, दिस इज दिशा पार्डी।
4: आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3 FM।
9: TECH

यार मुझे ना बिल्कुल याद ही नहीं आ रहा था कि मैंने आपको इस बारे में मतलब इन्फॉर्म किया है या नहीं किया है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं फिर से बता देती हूँ, जिन लोगों ने नहीं सुना था उनको पता चल जाएगा। हाँ जी, वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर। मैं हूँ आपकी कशोशन, शो आपके लिए टेक

टॉक लेकर आ गई हूँ जहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात होती है लेकिन मस्ती के मजे के तड़के के साथ। अब देखिए यार, अगर आप मेरी तरह एक चटपटी बैडी हैं जिसे अब अलग अलग आउटफिट्स पहनना बहुत पसंद है, जिन्हें यू नो अलग अलग तरीके के इससे अपने आउटफिट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना पसंद है और लेकिन इतना दिमाग नहीं चलाया जाता और इतना टाइम स्पेंड नहीं किया जाता, तो आपके लिए टेक्नोलॉजी बन चुकी है। आपको बस अपने वार्डरोब के हर एक यू नो गारमेंट की हर एक मतलब पीस की फोटो लेनी है एंड उसे अपलोड कर देनी है एंड उसके बाद आपका पूरा वार्डरोब डिजिटली शिफ्ट हो जाएगा एंड आपको बस क्लिक करना है एंड आपका जो AI है वो आपको बताएगा कि ओ आप ये आउटफिट भी पहन सकते हो, ये आउटफिट भी पहन सकते हो, ये भी पहन सकते हो। सो बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे लेकिन बिना अपना टाइम और अपना दिमाग खर्च किए। तो बस जल्दी से इस फीचर को यूज करो और बताओ कि यार ये फीचर आपको लगता है कि नहीं लगता है, आपके काम का है। मैं हूं आपकी कशिश, मुलाकात होगी इस गाने के उस पार। स्टे ट्यून रहो और कहते रहो जियो बिंदास।

क्या आपके दिमाग के साथ साथ आपका लैपटॉप भी स्लो हो गया है? और अगर ऐसा है तो उसके लिए मैं कुछ लेकर आ गई हूँ। नहीं, आपके दिमाग का कुछ नहीं हो सकता, उसको तो आपको मतलब अच्छी सी लॉन्ग ड्राइव पे जाकर ही यू नो रीस्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन आपके लैपटॉप के लिए आप क्या कर सकते हो वो मैं बताने वाली हूँ। सो वेलकम जी, 106.3 रेडियो ऑलिव पर मैं हूँ आपकी कशिश, शो आपके लिए टेक टॉक लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात होती है लेकिन मस्ती के मजे के तड़के के साथ। अब देखिए यार, अगर आपका लैपटॉप या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो बहुत टाइम से काम कर रहा है एंड उसका स्पीड जो है वो थोड़ी सी स्लो हो गई है, सो आपको वीक में एक बार उसे रीस्टार्ट करना है। हाँ जी, उसको बंद नहीं होने देना है। ऐसा नहीं है कि वो डिस्चार्ज हो गया, बैटरी जो है उसकी चली गई तो आपने चार्ज पे लगाया और सोचा कि अरे ये तो रीस्टार्ट हो गया। नहीं नहीं नहीं, अपनी मर्जी से उसको रीस्टार्ट करना है। इससे क्या होता है, उसकी रैम क्लियर हो जाती है, शट डाउन होने के बाद जो है वो बैकग्राउंड में जो चीज़ें चल रही होती हैं उनका प्रोसेस जो होना होता है वो अच्छा हो जाता है एंड सिग्निफिकेंटली जो है सिस्टम ओवरऑल जो है वो स्पीड में बूस्ट करने लग जाता है। सो सिंपल सी मेंटेनेंस टिप है अपने लैपटॉप को या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जो है रूटीन से वीक में एक बार रीस्टार्ट करना है बस आपको, फिर देखो क्या काम करेगा वो। सर्विस जो है सेंटर पे कम लेके जाना पड़ेगा, मेहनत कम हो जाएगी, घूमने जा पाओगे फिर। मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में, स्टे ट्यून रहिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जी ओबिंदा।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: यार मुझे 10 GB फ्री मिला मेरे हाला रिचार्ज के साथ।
2: क्या, कैसे?
1: बस रिचार्ज करो और तुम्हें फ्री डेटा या मिनट्स मिलते हैं। कल मुझे 50 फ्री मिनट्स मिले।
2: रोज मिलता है क्या?
1: हाँ रोज मिलता है।
2: मैं भी अपना हाला नंबर रिचार्ज कर रहा हूँ।
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
3: TECO

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
3: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
2: योर स्पेशल ऑफर?
3: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
2: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
3: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
2: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।

देखो जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक अम्ब्रेला यानी एक छाते को किस किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, स्टाइल मारने के लिए, बारिश से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए, है ना? लेकिन अब लोग जो है इस छाते को यूज करेंगे रील देखने के लिए। हाँ जी, वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर। मैं हूँ आपकी कशिश, शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ टेक टॉक, जहाँ हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं लेकिन मस्ती के, मजे के, तड़के के साथ। अब देखिए यार, एक ऐसा अम्ब्रेला जो है वो मार्केट में आ चुका है जिसमें स्क्रीन होगी, तो यानी अब आप चलते चलते अपने फोन पे नहीं, अपने यू नो अम्ब्रेला पे ही रील स्क्रोल कर पाएंगे, स्क्रीन से कॉन्टेंट देख पाएंगे, एंड सिर्फ इतना ही नहीं, नेविगेट कर पाएंगे यानी मैप भी देख पाएंगे। एक तरीके से अच्छी भी चीज़ है, क्योंकि बारिश में या जब एकदम यू नो धूप पड़ रही होती है, स्क्रीन दिख नहीं रहा होता है, तब आपको फ़ोन निकालने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आपके सामने आपके सर के ऊपर जो छाता है उसी पर आपको सब कुछ दिख जाएगा। लेकिन एक तरीके से ये भी है कि अब लोगों का अटेंशन स्पैन और कम हो जाएगा। पता नहीं यार, टेक्नोलॉजी जितनी अच्छी है उतनी खराब भी लगती है कई बार। स्टे ट्यून्ड रही आपकी कशिश के साथ और कहते रहिए जियो बिंदास।

कई बार देखो कंपटीशन को एलिमिनेट करना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता है, कंपटीशन को खुद के साथ मिला लेना भी एक टेक्निक होती है। हाँ जी, वेलकम बैक 106.3 रेडियो पर। मैं हूँ आपकी कशिश, शो आपके लिए टेक टॉक लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात होती है लेकिन मस्ती के मजे के तड़के के साथ। अब देखिए यार, अब आपने लास्ट टाइम किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन, किसी कैफे का रिव्यू या मतलब मौसम की अपडेट या कुछ भी, कहाँ से देखा था? मैंने तो देखो इंस्टाग्राम से देखा था। अब मुझे किसी भी चीज के बारे में इन्फॉर्मेशन सबसे पहले इंस्टाग्राम से मिलती है, मैं बाद में जाकर गूगल सर्च करती हूँ या गूगल सर्च करती भी नहीं हूँ। कई बार मुझे इंस्टाग्राम पे ही आंसर मिलता है।

आएगी एंड इसके लिए ऐप चेंज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. यानी आप डायरेक्टली आपकी रील को में अगर कोई इन्फॉर्मेशन है या सर्च से रिलेटेड वो है तो डायरेक्टली आपकी रील जो है वो देखी जा सकती है. बताइए यार क्या बात है, यानी अब आपको व्यूज तो मिलेंगे लेकिन साथ में सर्च भी मिलेंगे. गुड गुड कॉन्टेंट बनाते रहिए एंड स्टे ट्यून्ड रहिए आपकी कशिश के साथ ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव. शो इज टिकटॉक, स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास.

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: यार, कार सर्विस के लिए बेस्ट और ट्रस्टेड जगह कौन सी है?
2: सलवा रोड पर वैल्वोलिन AMTC, क्विक सर्विस और नो टेंशन.
1: चीप ऑयल पर भरोसा नहीं होता है भाई.
2: अरे भाई, वहाँ ट्रेंड एक्सपर्ट्स हैं, सिर्फ जेन्युइन वैल्वोलिन ऑयल, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं.
3: विजिट वैल्वोलिन AMTC सलवा रोड या कॉल करें 7765 5954. वैल्वोलिन, ड्रिवन बाय ट्रस्ट, पावर्ड बाय क्वालिटी.
0: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.

तो जो देखो जैसे वक्त आता है हर किसी के जाने का मेरा भी आ गया है लेकिन बाकी कोई लौट के आपके जीवन में वापस आए ना आए मैं कल जरूर से आऊंगी 10 बजे अपना शो लाइफ मस्त है लेकर वेलकम बैक जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर आप मेरे साथ एंजॉय कर रहे थे शो टेक टॉक जहां मस्ती मजे के तड़के के साथ हम टेक्नोलॉजी पे बातचीत जो है वो करते हैं अब खैर मेरे यहां से जाने का वक्त आ गया है आप वीकेंड एंजॉय कीजिए थोड़ी सी देर में मुस्कान एक बड़ी सी मुस्कान लेकर अपना शो हैप्पी वीकेंड लेकर आ जाएगी सो उनके साथ भी एंजॉय कीजिएगा अपना वीकेंड कैसा गया ये मुझे मैसेज जरूर कीजिएगा 3311063 पर ताकि कल आकर मैं वो मैसेज पढ़ूं तो मुझे ना ऐसे दिल से खुशी हो बाकी टेक टॉक शो आपको कैसा लगा इसके फीडबैक जो है वो भी आप मुझे दे सकते हैं 3311063 इज द नंबर फिलहाल मैं चलती हूँ और जाते जाते वही कहूंगी जो हर रोज कहती हूँ कि गाड़ी धीरे धीरे हौले हौले चलाइएगा खाना खाते रहिएगा पानी पीते रहिएगा सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल मत भूलना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना एंड मुझे जो है याद करते रहना ओके चाचा बाय बाय जियो बिंदास

गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: देखो तो हम पास, लेकिन सोचो कितनी दूरी है, कैसी ये मजबूरी है।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।

गुड इवनिंग, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम है ऑफ कोर्स हैप्पी वीकेंड्स, क्योंकि हर वीकेंड में और आप मिलते हैं. अगले तीन घंटे ना हम बहुत सारी नई नई अमेजिंग चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं. तो फाइनली वो दिन आ जाता है जब थर्सडे को हम सब इंतजार कर रहे होते हैं वीकेंड का. वीकेंड का मतलब ना सिर्फ ऑफिस से छुट्टी नहीं होता, वीकेंड का मतलब होता है थोड़ा सा खुद के साथ वक्त बिताना, किसी के लिए लेट उठना, किसी के लिए फैमिली का ब्रेकफास्ट, और किसी के लिए बस एसी ऑन करके पूरा टाइम नेटफ्लिक्स एंड चिल करना. एंड मुझे लगता है कतर के इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनकी लाइफ में देखती हूँ, वीकेंड पे एवरीबॉडी इज सो एक्साइटेड कि भाई यहाँ जाएंगे, दोस्तों से मिलेंगे, यू नो, अलग अलग कैफेज को एक्सप्लोर करेंगे. और स्पेशली इस मौसम में जब आप बाहर बहुत ज़्यादा नहीं जा सकते, तब यू ट्राई कि यार कहीं नई चीज़ें एक्सप्लोर की जाएँ. साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि वीकेंड तभी रिफ्रेशिंग होता है जब हम उसे सिर्फ रेस्ट नहीं बल्कि रिवॉर्ड की तरह ट्रीट करते हैं. मतलब कुछ ऐसा करिए जो आपको जेन्युइनली खुश करे. तो आज के शो में हम बात करेंगे कतर की, वीकेंड प्लान्स की, थोड़ी लाइफ की और बहुत सारी स्माइल्स की. मैं हूं मुस्कान और ये है रेडियो ऑल 106.3 FM. वी विल बी हियर फॉर नेक्स्ट 3 आवर्स. तब तक के लिए सुपर हिट गानों के साथ सुनते रहिए रेडियो ऑल. जियो बिंदास.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: آپ سن رہے ہیں قطر کا نمبر ون ریڈیو اسٹیشن ریڈیو اولیو 106.3 FM.
2: जैसे ही नया मंथ स्टार्ट होता है तो मैं आपको बोलती हूँ कि देखो सैलरी आ गई है, यू कैन गो चेक आउट यू नो सम न्यू थिंग्स. और इसी के साथ अगस्त के फ्यूल प्राइसेस भी इस बार थोड़े से चेंज हुए थे. सो मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूल का जो कनेक्शन है ना वो हर घर से है. सो 91 प्रीमियम पेट्रोल अब 2 कतरी रियाल पर लीटर है और जुलाई के कंपेरिजन में ये 5 पॉइंट नीचे है. सो 95 सुपर और डीजल के प्राइस सेम है. और आई वॉज थिंकिंग कि यार इस

सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि पेट्रोल का जो प्राइस है वो सिर्फ गाड़ी नहीं चलाता, वीगन के प्लान्स भी बनाता है। सो लॉन्ग ड्राइव पर अगर जाने का मन होता है तब आपको पता चलता है नहीं यार थोड़ा सा तो चेंज आया है। यू आर लिसनिंग रेडियो वाले 106.3 FM, दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम है अफकोर्स हैप्पी वीकेंड्स। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि एवरी बडी हैज़ सम प्लान्स ऑन वीकेंड। मैं जितने भी लोगों को इंस्टाग्राम पर देखती हूँ या जिनकी जितने भी लोगों से मिलती हूँ या जितने लोगों को जानती हूँ, उन सब की लाइफ में वीकेंड हैज़ यू नो स्पेशल थिंग्स के यहाँ पर जाना है, दोस्तों से मिलना है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, नया कैफे खुला है यहाँ पे उसमें जाना है। सो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो है चलती रहती हैं। और सबसे पहले कतर में किस डायरेक्शन में आपको लगता है कि यार मुझे अपनी गाड़ी घुमानी चाहिए जब भी वीकेंड आता है? तो 3311063 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: यार, कार सर्विस के लिए बेस्ट और ट्रस्टेड जगह कौन सी है?
2: सलवा रोड पर वैल्वोलिन AMTC, क्विक सर्विस और नो टेंशन.
1: चीप ऑयल पर भरोसा नहीं होता है भाई.
2: अरे भाई, वहाँ ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स हैं, सिर्फ जेन्युइन वैल्वोलिन ऑयल, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं.
3: विजिट वैल्वोलिन AMTC सलवा रोड या कॉल करें 7765 5954. वैल्वोलिन, ड्रिवन बाई ट्रस्ट, पावर्ड बाई क्वालिटी.

एक जगह होती है जहाँ जाना सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं एक्सपीरियंस होता है, और कतर में ओल्ड दोहा पोर्ट बिल्कुल वैसी ही जगह है। समर को देखते हुए अब वहाँ वेले पार्किंग, गोल्फ कार्ट राइड्स और बेटर एक्सेसिबिलिटी फैसिलिटीज जो है वो ऑफकोर्स इंट्रोड्यूस हो गई थी काफी टाइम पहले। मतलब कम वॉकिंग, ज्यादा इंजॉइंग। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM। मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है हैप्पी वीकेंड्स। मुझे लगता है ना कि हर सिटी की असली खूबसूरती सिर्फ बिल्डिंग से तो नहीं होती, बल्कि उन छोटी छोटी फैसिलिटीज से होती है जो लोगों की लाइफ को आसान बनाते हैं। सो कतर इसी डायरेक्शन में काफी अच्छा काम करता है, चाहे वो सर्दियां हो चाहे गर्मियां हो, हर टाइम पर आपको एक अलग चीज मिल जाती है। और वैसे आप ओल्ड दोहा पोर्ट लास्ट टाइम कब गए थे, सनसेट देखने, कॉफी पीने या सिर्फ वॉक करने? मुझे वहां पर सच में बैठना बहुत अच्छा लगता है जब वेदर बहुत अच्छा होता है, और जब वेदर अच्छा नहीं होता तो आपके पास वहां पर बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है, जैसे आप वेले पार्किंग के लिए दे सकते हैं पार्किंग, आपको ज्यादा वॉक नहीं करना पड़ता, यू नो आप जहां पे भी ड्रॉप लोकेशन अपनी डालोगे आप वहां तक जा सकते हो कैब से भी। सो आई रियली लाइक डेट, मतलब शाम के टाइम पर तो कभी भी जा सकते हैं। इसी के साथ वी विल टॉक अबाउट वीकेंड वेदर, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुंदर रेडियो ऑलिव, ये हैप्पी वीकेंड्स, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: यार मुझे 10 GB फ्री मिला मेरे हाला रिचार्ज के साथ।
2: क्या, कैसे?
1: बस रिचार्ज करो और तुम्हें फ्री डेटा या मिनट्स मिलते हैं। कल मुझे 50 फ्री मिनट्स मिले।
2: रोज मिलता है क्या?
1: हाँ रोज मिलता है।
2: मैं भी अपना हाला नंबर रिचार्ज कर रहा हूँ।
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
3: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
4: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटीजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

ब्यूटीफुल ट्रैक यार, मतलब खूबसूरत गाने और वीकेंड का एक अलग ही कनेक्शन है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम यस ऑफ कोर्स हैप्पी वीकेंड्स। वीकेंड प्लानिंग से पहले वेदर प्लानिंग बहुत जरूरी होती है। अब टेम्परेचर जो है 45-44 डिग्री के आसपास जा रहा है, सो थोड़े क्लाउड्स रहेंगे, ह्यूमिडिटी तो है ही, मतलब वो तो कम करेगी नहीं, होगी नहीं। और इसी वेदर में एक बात और याद रखिए कि पानी पीना पोस्टपोन मत करिएगा। बॉडी को प्यास लगने से पहले हाइड्रेशन चाहिए होता है। अगर बाहर निकल रहे हो तो कार में एक एक्स्ट्रा वाटर बॉटल जरूर रखिएगा, वीकेंड एंजॉय करने के लिए स्मार्टली, क्योंकि कतर की गर्मी मजाक नहीं करती। और मुझे ऐसा लगता है कि आप हीट को कैसे बीट करते हैं ये तो पूछना ही बेकार होगा। मतलब चाहे आप कोल्ड कॉफी ले लीजिए, आप कितना भी एसी चला लीजिए, या फिर आप कितनी भी सनस्क्रीन लगा लीजिए, यहाँ पर आपको मतलब एक डिफरेंट टाइप का वेदर जो है वो फील करने के लिए मिलता है। सो आई विल से कि इस वेदर के साथ मैं तो सीधा मॉल भाग जाती थी स्टार्टिंग में जब मैं कतर शिफ्ट हुई, क्योंकि मुझे लगता था बाहर तो रह ही नहीं सकते। लेकिन फिर धीरे धीरे पता चला कि यार आउटडोर प्लान्स भी यहाँ पे बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। धीरे धीरे यू नो सीखना शुरू किया। आप मुझे बताइए कि आप वीकेंड पे सबसे ज़्यादा कहाँ जाते हैं। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, नंबर है 3311106 3। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

बात बताइए, अगर दुनिया की सारी कुजींस एक ही जगह मिल जाएं, तो क्या आप सबसे पहले किसी स्टॉल की लाइन में लगोगे? गुड न्यूज है उन फूडीज के लिए। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम है हैप्पी वीकेंड। सो कतर इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल की बात मैं पहले भी कर चुकी हूँ। जो फूड फेस्टिवल 2027 की डेट्स जो है वो ऑफिशियली पहले भी आ चुकी हैं, लेकिन अभी मैं उनको थोड़ा सा डिटेल में आपको बताती हूँ। सो 13th of January से 23rd of January तक लुसेल स्टेडियम में एक बड़ा फूड पैराडाइज बनने वाला है, जहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि एंट्री एकदम फ्री होने वाली है। वैसे फूड फेस्टिवल ना सिर्फ खाने के लिए तो नहीं होता, ये कल्चर को टेस्ट करने का एक सही तरीका होता है, और वो भी एक ही जगह पर। यू नो, चाहे इटली की बाइट हो या सिप ऑफ टर्की हो या फिर एक डेजर्ट हो इंडिया का या फिर एक सेल्फी हो कतर की, मतलब हर चीज एक ही जगह पर, और वो भी अपने दोस्तों के साथ। मतलब आप कहीं प्लान बनाते हो, मान लो टर्की जाना है, जॉर्जिया जाना है, तो आप सोचते हो पहले यार किसके साथ जाएं, फिर उसके सारे एक्सपीरियंसेस आप लोगों को बताते हो। लेकिन यहाँ पर रिसर्च कहती है कि जब हम नए फ्लेवर्स ट्राई करते हैं तो ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है, यानी हैप्पीनेस भी सर्व होती है एक ही प्लेट के साथ, और वो भी दोस्तों के साथ। सो अगर आपको सिर्फ एक कुजीन चूज करनी हो, इंडियन, अरबिक, इटालियन, जापानीज, तो आप किस कंट्री की यू नो कुजीन को काउंटर की तरफ भागने की कोशिश करोगे? मैं हूं मुस्कान, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, और नंबर है 3311063। जनवरी का इंतजार करते हैं, अच्छा मौसम और खाना दोनों मिलने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

सो ट्रैवल करते टाइम ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चीज़ें भूलते हैं, लेकिन पासपोर्ट कोई नहीं भूलता, राइट? लेकिन मेडिसिन भूल जाना या उनके रूल्स को नहीं पता करना या ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है। और इसी को ईजी बनाने के लिए कथा मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने एक नया इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लॉन्च किया है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम येस ऑफ कोर्स हैप्पी वीगन्स। अब अगर आप कंट्रोल्ड मेडिसिन के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो ऑनलाइन परमिट अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हैं और अप्रूवल डिजिटली रिसीव कर सकते हैं। सोचिए यार कितना इजी है, कितना सिंपल हो गया सब कुछ। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। ट्रैवल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि लोग पैकिंग से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की वजह से स्ट्रेस लेते हैं, इसीलिए एक चेकलिस्ट बनाना हमेशा ना बेस्ट आइडिया होता है। पासपोर्ट, टिकट्स, चार्जर, मेडिसिन और हाँ पावर बैंक कभी मत भूलेगा। मैं हमेशा भूल जाती हूँ और बाद में बहुत पछताती हूँ। वैसे आप बताइए कि ट्रैवल पे निकलते वक्त सबसे पहली चीज आप क्या पैक करते हैं। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, नंबर है 3311063 और ये है हैप्पी वीकेंड्स।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: यार कार सर्विस के लिए बेस्ट और ट्रस्टेड जगह कौन सी है?
2: सलवा रोड पर वैल्वोलिन AMTC, क्विक सर्विस और नो टेंशन।
1: चीप ऑयल पर भरोसा नहीं होता है भाई।
2: अरे भाई वहाँ ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स हैं, सिर्फ जेन्युइन वैल्वोलिन ऑयल, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं।
3: विजिट वैल्वोलिन AMTC सलवा रोड या कॉल करें 7765 5954। वैल्वोलिन, ड्रिवन बाई ट्रस्ट, पावर्ड बाई क्वालिटी।

भाई चाहे संडे की शाम हो या फिर फ्राइडे की मॉर्निंग हो, भाई हर सक्सेसफुल इंसान का ना एक सीक्रेट होता है, उसका नाम है रीसेट। नोटिस किया है कभी आपने, फोन को रीसेट करते ही वो बेटर काम करता है, थोड़े स्पीड में काम करता है। वैसे ही हम भी करते हैं, कोई वार्डरोब ऑर्गेनाइज करता है, कोई नेक्स्ट वीक का प्लानर बनाता है, कोई बैल्कनी में चाय लेकर 20 मिनट बस आराम से बैठना चाहता है, और प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सिर्फ 30 मिनट की प्लानिंग पूरे वीक का स्ट्रेस काफी कम कर सकती है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, दिस इज मी मुस्कान विद यू, और शो का नाम है हैप्पी वीकेंड्स। वैसे तो हर दिन हम मिलते हैं मिडनाइट लाउंज में, जहां पर मैं और आप मिलके किस्से, कहानी और अलग अलग अतरंगी चीजों की बात करते हैं, पर वीकेंड पे मैं आपको बता पाती हूँ कि भाई किस तरह से यू नो आप अपनी पूरी लाइफ को आसान बना सकते हैं। सो वीकेंड का मतलब सिर्फ लेट उठना या खुद को थोड़ा सा रिचार्ज करना नहीं है, मतलब खुद के साथ टाइम बिताना। ऑफ कोर्स आपका वीकेंड जो रीसेट रिचुअल है वो अलग हो सकता है, हो सकता है आपको म्यूजिक पसंद हो सकता है आपको क्लीनिंग पसंद हो सकता है आपको लॉन्ग ड्राइव पसंद हो, या बस फोन साइलेंट करके थोड़ा सा पीस पसंद हो। मेरे साथ अगर मैं बात करूं तो मुझे क्लीनिंग बहुत पसंद है, आई डोंट नो व्हाई आई लाइक क्लीन स्पेसेस। तो मुझे लगता है कि वीकेंड का मतलब है क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजिंग, वो मेरी लाइफ को बहुत आसान बनाता है। सो यू टेल मी कि आपको वीकेंड पे सबसे ज्यादा क्या पसंद है। 3311063 इज माई नंबर, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड दी हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

जब भी लग्जरी का नाम आता है तो दिमाग में सबसे पहले कोई एक्सपेंसिव कार या कोई 5-star होटल या फिर कोई ब्रांडेड शॉपिंग आती है, राइट? लेकिन सच बताऊं, लाइफ की सबसे बड़ी लग्जरीज फ्री या फिर बहुत छोटी होती है। फ्रेश बेडशीट पर सोना, बारिश देखते हुए चाय पीना जो कि कतर में बहुत कम होती है, फैमिली के साथ बिना जल्दी लंच करना, ठीक है, मतलब कभी कभी वीकेंड पर अलार्म के बिना उठना, बस यही लग्जरी है मेरे लिए, ठीक है। एक सर्वे कहता है कि लोगों को सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस स्मॉल डेली प्लेजर से मिलती है, ना कि एक्सपेंसिव परचेस से। एक्सपेंसिव परचेजेस जो हैं वो डोपामिन रिलीज करते हैं, कुछ देर के लिए आपको हैप्पीनेस देते हैं और फिर आप भूल जाते हो। इसीलिए कभी कभी लग्जरी का मतलब सिर्फ टाइम ही होता है। और वीकेंड में हमेशा मुझे लगता है कि वही आपके लिए गिफ्ट है। आपकी लाइफ की स्मॉल लग्जरी क्या है? एक गर्म चाय या फिर इस टाइम पर एक ठंडी कोल्ड कॉफ़ी या फिर कोई अच्छी किताब या फिर दोस्तों से मिलना। और वो 3 घंटे जब आप बिना किसी डिस्टर्बेंस के कुछ शॉपिंग कर पाते हो, घूम पाते हो, खाना खा पाते हो, वो आपके लिए लग्जरी है। बताइए मुझे 3311063 पर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव और ये है हैप्पी वीकेंड्स।

एक फनी सा क्वेश्चन आया है दिमाग में और सोचा क्यों ना आपसे पूछा जाए। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 एफएम, दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम है हैप्पी वीकेंड्स। अगर लाइफ में एक काम परमानेंटली किसी और को दे दे तो कौन सा आप दे सकते फ्री ऑफ कॉस्ट? तो लॉन्ड्री, कुकिंग, आयरनिंग या ईमेल्स, या फिर संडे की जितनी भी मीटिंग्स होती हैं कतर में, जो लाइनअप होती हैं और आपको फटाफट से भाग के ऑफिस जाना पड़ता है वो। सोचिए, टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है, रोबोट वैक्यूम्स आ गए हैं, AI ईमेल्स लिख रहे हैं, ग्रॉसरीज घर आ रही हैं विद इन 10 to 15 minutes, लेकिन फिर भी कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम कभी भी किसी को नहीं दे सकते। जैसे कि मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है, लेकिन उसकी पैकिंग करने में और अनपैकिंग करने में जो काम लगता है ना, वो ट्रैवलिंग से ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। सो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बच्चों को सुलाना, लाइफ के और भी बहुत सारे छोटे छोटे काम हैं, जैसे कि यू नो, अपनी पूरी रूम को सेट करना, अपने लिए एक अच्छा वाइब क्रिएट करना, ये सब चीज़ें AI कभी नहीं कर सकता। सो, रिसर्चर्स कहते हैं कि लोग घर के छोटे जो रिपीटेटिव काम हैं उनमें हर साल 200 से ज़्यादा घंटे स्पेंड करते हैं। सो, आप मुझे बताइए, अगर कोई काम परमानेंटली आउटसोर्स करना हो तो आप क्या करोगे? सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, नंबर है 3311063, ये है हैप्पी वीकेंड्स। Stay tuned, Jio, Bindaas.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: यार, कार सर्विस के लिए बेस्ट और ट्रस्टेड जगह कौन सी है?
2: सलवा रोड पर वैल्वोलिन AMTC, क्विक सर्विस और नो टेंशन।
3: चीप ऑयल पर भरोसा नहीं होता है भाई?
2: अरे भाई, वहाँ ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स हैं, सिर्फ जेन्युइन वैल्वोलिन ऑयल, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं।
4: विजिट वैल्वोलिन AMTC सलवा रोड या कॉल करें 7765 5954। वैल्वोलिन, ड्रिवन बाई ट्रस्ट, पावर्ड बाई क्वालिटी।

0: सो आज एक चैलेंज देते हैं, सिर्फ 24 घंटे, बस एक दिन, ठीक है? कल आई नो सैटरडे है, आपको या तो हाफ डे होगा या फिर छुट्टी होगी। नो कंप्लेंट्स, ट्रैफिक की कंप्लेंट नहीं, हीट की कोई कंप्लेंट नहीं, ऑफिस की कोई कंप्लेंट नहीं, और हाँ, वाईफाई स्लो हुआ तो उसकी भी कोई कंप्लेंट नहीं। सुनने में बहुत ईजी लग रहा है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि एवरेज इंसान एक दिन में 15 से 20 बार कंप्लेंट करता है, कभी वेदर की, कभी लोगों से, कभी सिचुएशन से। और जितनी बार हम कंप्लेन करते हैं उतनी बार ब्रेन नेगेटिव थॉट्स को रेनफोर्स करता है। तो इस वीकेंड एक एक्सपेरिमेंट कीजिए, कंप्लेन की जगह ग्रैटिट्यूड को चूज कीजिए। पूरे 24 घंटे, अब आज शाम, जैसे फ्राइडे की पूरी रात होने को आ गई है, अभी भी आपके पास डिनर का टाइम बाकी है, कल सैटरडे तक कोई कंप्लेंट मत कीजिए, सैटरडे की रात तक। संडे को जब आप ऑफिस जाएंगे तब कीजिएगा कंप्लेंट। और ऑनेस्टली, आप कितनी देर तक बिना कंप्लेंट के रह सकते हैं आप ये भी देख लोगे। सो व्हाट्सएप करके कल मुझे जरूर बताना 3311063 पर, कल रात को मिडनाइट लाउंज में मैं यहीं पर रहूंगी। सो क्या आप 24 घंटे ग्रैटिट्यूड के साथ विदाउट कंप्लेंट रह सकते हैं? नंबर सेम है 3311063। मैं हूँ मुस्कान और ये हैप्पी वीकेंड्स।
1: आप सुन रहे हैं कतर का #1 रेडियो स्टेशन, रेडियो ओलिव 106.3 FM।

गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: बदलते रहते हैं, चैट्स भी क्लीन होती रहती हैं, लेकिन हर किसी के फोन में एक मैसेज ऐसा जरूर होता है जो कभी डिलीट नहीं होता। किसी के फादर का बेटा सेफली पहुंच जाना वाला मैसेज, या किसी की मदर का कोई मैसेज, किसी दोस्त का मैसेज, और किसी स्पेशल इंसान का मैसेज जो आज भी बहुत ज़्यादा आपको स्माइल दे जाता है और आप उसे जानबूझ के बार बार पढ़ने की कोशिश करते हो। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम ऑफकोर्स हैप्पी वीकेंड्स। आई नो थोड़ा सा इमोशनल बात हो गई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाई कई सारी ऐसी पिक्चर्स हैं जो मैं फ़ोन बदलने के बाद भी यू नो अपने पास संभाल के रखती हूँ। आई डोंट लाइक कि पूरा डेटा पुराने फ़ोन से नए फ़ोन में लेना, मुझे लगता है जो इम्पॉर्टेंट है वो ले लिया जाए। पर कुछ पिक्चर्स, कुछ मैसेजेस, कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐसे होते हैं जो आप हमेशा ट्रांसफ़र करते हो अपने नए फ़ोन में। एक सर्वे कहता है कि लोग हज़ारों फोटोज डिलीट कर देते हैं, लेकिन इमोशनल मैसेजेस जो होते हैं वो सालों तक सेव रखते हैं। सो यू टेल मी, आपके फ़ोन में वो कौन सा मैसेज है जो कभी डिलीट नहीं होगा? 3311063 is my number. You are listening Radio Olive और ये है Happy Weekends.
1: आप सुन रहे हैं कतर का number one radio station, Radio Olive 106.3 FM.

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: Fresh fish on the grill, slow-cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Serve with pride. Danadal Bahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif, Alcor.
2: Radio Olive par aane wala gaana cool song of the hour song of the
3: hour kya baat hai sir kya baat ye baat hai cool song

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स. मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले. विजिट कार्मल ग्रुप नाउ.
0: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.

और बस इसी के साथ आज का हैप्पी वीकेंड्स यहीं पर ख़त्म होता है। जहां से पहले एक छोटी सी बात मैं स्टार्ट करना चाहूँगी। देखिए, मेरे तो जाने का टाइम हो गया है, फ्राइडे इज़ ऑलमोस्ट ओवर, मतलब अभी भी थोड़ा सा टाइम है, रात है आपके पास, उसके बाद कल सैटरडे को आप इन्जॉय कीजिए और संडे से बैक टू लाइफ आ जाइए। लाइफ में ना हमेशा बड़े मोमेंट से ये मत सोचिए कि बस यही याद रहेंगे, कभी एक कप चाय, कभी अच्छी कॉन्वर्सेशन, कोई फैमिली के साथ डिनर या छोटी सी ड्राइव भी लाइफ टाइम के लिए बहुत यादगार रह सकती है। सो इस बचे कुछ वीकेंड में सो फोटोज लीजिए, लेकिन उससे पहले मोमेंट्स को फील कीजिए, थोड़ा हंसिए, थोड़ा फैमिली के साथ बैठिए, थोड़ा दोस्तों के साथ खिलखिलाइए और थोड़ा खुद के लिए भी वक्त निकालिए। सो अभी के लिए आई हैव टू से कि मैं हूँ मुस्कान, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और याद रखिए, वीकेंड खत्म हो जाता है लेकिन उसकी अच्छी यादें पूरे हफ्ते मुस्कुराती रहती हैं। सो उन यादों के साथ अगला हफ्ता तैयार हो जाइए। सभी के लिए आई हैव टू से कि मुझे जाना होगा। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM। बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड। जियो, बिंदास।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. Jio Bindas. Lala, lala, lala, lala, lala, lala, lala, jal tera.

0: यार कार सर्विस के लिए बेस्ट और ट्रस्टेड जगह कौन सी है?
1: सलवा रोड पर वाल्वोलिन AMTC, क्विक सर्विस और नो टेंशन।
0: चीप ऑयल पर भरोसा नहीं होता है भाई।
1: अरे भाई वहाँ ट्रेंड एक्सपर्ट्स हैं, सिर्फ जेन्युइन वाल्वोलिन ऑयल, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं।
2: विजिट वाल्वोलिन AMTC सलवा रोड या कॉल करें 7765-5954। वाल्वोलिन, ड्रिवन बाय ट्रस्ट, पावर्ड बाय क्वालिटी।
3: Goes on.

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: You are now tuned

अभी तो पूरे शहर की इवनिंग होती है। ओहो।

तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो।

आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास 106.3 FM।

Radio Olive 106.3 FM Gio Bendaz.